0: हुआ क्या है?
1: सुना है स्कूल पे असर है।
0: किसका?
1: टीचर पे जिन चढ़ गया।
0: स्कूल में जिन रह सकते हैं?
2: बड़ी बातें चल रही हैं कि स्कूल टीचर बीमार है।
0: जिन असल में होते हैं?
3: होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
4: एक के बाद एक बीमार हो गया, उन्होंने भी काम रोक दिया।
0: किसी ने उन जिनों को भगाने की कोशिश नहीं की?
4: क्या पता किया हो नहीं किया हो, लेकिन वो बिल्डिंग अभी तक खंडहर पड़ा है।
5: सब कहते हैं कि तालीम एक बुनियादी हक है, मगर मैं मानता हूँ ये एक इस्तेहकाक है।